0: जी टीवी HD पर सारे गामा पामे कसौटी पर उतरकर कंटेस्टेंट्स करेंगे म्यूजिकल धमाल।
1: What a talent यार, come on।
0: एयर इंडिया सारे गामा पा प्रेजेंटेड बाय साउथ हॉल ट्रैवल
2: कल शाम 7:30 बजे
0: ZTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
3: Pepe's Piri Piri presents the Unstoppable Tour 2027. After a sold-out tour this year, the supremely talented Shreya Ghoshal is coming back once again for a very special concert to celebrate the O2's 20th birthday on the 4th of June 2027 at the O2 London. Tickets are selling fast via Ticketmaster and Videorama. Grab your tickets now. This show is powered by Dairy Valley, produced by Grace Entertainment and Rallo Events, radio partners Sunrise Radio.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: Need anything from Tesco? How about some smoked salmon? The fancy one that's smoked using 3 different types of wood chip before being matured for at least 36 hours for a robust and smoky flavour.
6: We go to the waters of the Shetland Isles for our finest mesquite, beech and oakwood smoked salmon. Now just £4.50 with your Tesco club card. The quality you need around the corner. Because every little helps. Majority of larger stores ends 27th of October. Club card or app required.
7: Mira's Bar and Pure Vegetarian Restaurant for family and friends in that perfect ambiance, offering mouth-watering vegetarian dishes. Open 6 days, now serving unlimited breakfast every Sunday from 9 to 11:30 a.m. Eat as much as you like from $12.99 and kids under 12 $5.99. Mira's Bar and Restaurant, 36 Queensbury Station Parade, Edgware. For bookings, visit mirarestaurant.com. Love all, serve all.

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
1: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोने से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
2: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
3: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
4: सनराइज रेडियो पर इस घंटे का हमारा हिट ऑफ द आवर टेक एंड फ्रॉम दृश्यम द कंक्लूजन लकी अली की आवाज में ये गाना मुस्कुरा दो. सो व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन दृश्यम द कंक्लूजन? डू यू थिंक टीम दृश्यम इज स्टिल मुस्कुराई स्माइलिंग? ओह, दे मस्ट बी लाफिंग देयर वे टू द बैंक. आई एम एक्सपेक्टिंग टू सी सम वेरी इंप्रेसिव नंबर्स एट द बॉक्स ऑफिस व्हेन इट फाइनली कंक्लूड्स इट्स थिएट्रिकल रन. व्हाट अबाउट यू?

0: लगता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com। Pepe's Piri Piri presents The Showstoppers, featuring the top three winners of Indian Idol Season 16. The very beautiful Jyotirmay Nayak, soulful Tanishq Shukla, and the very entertaining Manraj Veer. After winning your hearts on TV, they are now coming to UK to perform live for the very first time this November. You can watch them perform in Birmingham on Friday 20th November at the Warehouse in the Aston Villa Stadium, on Saturday 21st November at the Live Centre Events Bradford, and on Sunday 22nd November at British Airways Arc, situated in Olympia London in West London. Tickets available via Ticketmaster and Videorama. Grab your tickets now. This show is powered by Dairy Valley and produced by Grace Entertainment and VM Law Solicitors. Radio partner Sunrise Radio.
1: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
2: Must be won.
3: Must be won.
4: Must be won.
5: Must be won.
1: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
6: दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार खेलो और जीतो प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में। खेल को जीतने के लिए मैं आपसे पूछने वाला हूँ पहला सवाल, जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। गोल बेचने की सबसे सही जगह कौन सी है?
7: मैं फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकती हूँ?
6: जी बिल्कुल।
8: शबनम, इसका जवाब गोल्ड बैंक है।
7: हाँ, मुझे राहुल का जवाब ठीक लगता है, गोल्ड बैंक।
6: बिल्कुल सही जवाब। अब आखिरी सवाल, गोल्ड खरीदने और बेचने दोनों के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है?
7: सर मुझे जवाब ठीक से पता नहीं है, मैं ऑडियंस से पूछ सकती हूँ?
6: बिल्कुल, आप ऑडियंस पोल ले सकती है।
9: गोल्ड बैंक।
7: मैं ऑडियंस के साथ हूँ, गोल्ड बैंक।
6: यहाँ देखिए 99.9% लोगों ने कहा है गोल्ड बैंक है सबसे सही जगह। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी इनकी तरह समझदार बनिए और गोल्ड खरीदने या बेचने के लिए गोल्ड बैंक ही जाएं।
10: विजिट द गोल्ड बैंक, 215 द ब्रॉडवे साउथ हॉल, 0203 500 1111, goldbank.co.uk।
11: Right now at Tesco Mobile, get your most powerful upgrade yet with the iPhone 18 Pro, the ultimate pro iPhone with 250 gigs of data, all for just £61.49 a month with club card prices, saving you £72. Even better, you'll also get a £100 Tesco gift card. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps.
12: Total device costs £1,295.64. Ends 1st of November. Club card and 36-month credit agreement required. Monthly rolling airtime delinking after 24 months. See TescoMobile.com/terms.
13: There's a moment right before the Lion King starts where the whole audience holds its breath. It lives in that moment. It lives in the rhythm of the Pride Lands and the heart of this city. It lives in the legacy, the connection, the wonder. Disney's The Lion King. It lives in you. At London's Lyceum Theatre.
14: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry-stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers, and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
15: Shabnam Sahi on Sunrise with Sony TV. What if your favorite contestants got one more chance to win? This season they do. It's Indian Idol. Legends return with Himesh Reshammiya. Starts 17th October only on Sony TV.

0: such thoughtful, imaginative, beautiful lyrics. जोनिता गांधी की आवाज में क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां, हजारों ख्वाहिशों से जैसे भर गई गुलमोहर की टहनियां. Anyone who's ever lived in Delhi, the advent of spring, when you see those beautiful gulmohar trees, absolutely resplendent with red, what a sight that is. And what a beautiful way of saying that mere khwaishon ki tehniya jo hai na, wo gulmohar se bhar gayi hai. My heart is bursting with desire. Absolutely love it. Who's the lyricist? अभी गूगल आंटी से पूछती हूँ.
1: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
2: Hello UK वालों, Big Boss is back और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं two chance. Big Boss only on Colors.
3: Watch Big Boss 20 tonight at 9:30 PM only on Colors TV and Jio Hotstar.
0: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. कभी कभी ना मुझको तो ऐसा ही लगता है कि जो लोग सोचते हैं कि क्यू गार्डन या हाइड पार्क इज इंडीड द अल्टीमेट प्लेस ऑफ ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, देव प्रोबेबली नेवर वॉक डाउन अ स्ट्रीट इन दिल्ली एट स्प्रिंग टाइम विद गुलमोहर ट्रीज इन फुल ब्लूम ऑन आइदर साइड.

0: दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. व्हाट अ प्लेयर.
1: वॉच इंडियाज टॉप 1% एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार.
2: वी आर गोइंग टू हैव टू वर्क वेरी वेरी फास्ट. आई डोंट हैव मच टाइम. राइट, सो टेल मी हु दिस मिस्ट्री पर्सन इज.
3: सबका एक इमेज होता है, और मेरा इमेज ऐसा है कि मारामारी के साथ तो मैं बहुत ही लाइक करते हैं लोग मुझे. और उसके अलावा लव एंगल वगैरह तो होते ही हर फिल्म में.
2: 07925 700 272. डू यू नो
4: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
5: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है.
2: Listen to the voice again.
3: सबका एक इमेज होता है, और मेरा इमेज ऐसा है कि मारामारी के साथ तो मैं बहुत ही लाइक करते हैं लोग मुझे. और उसके अलावा लव एंगल वगैरह तो होते ही हर फिल्म में.
2: Who is that mystery person?

0: from Kabil.
1: Listener's Choice brought to you by Star Plus.
2: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है. What a player!
3: Watch India's top 1% every weekend at 8 PM on Star Plus and Jio Hotstar.
0: All right, we're guessing the film. Okay, no clues to start with. Let's see who's going to be my hero of the hour. Can you work out what it is without a clue? Here we go.
4: नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा. पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे एजुकेटेड यंग मैन की जरूरत है. एड नहीं देखा तुमने?
5: ओह कम ऑन डैडी, आप क्या समझते हैं रवि पुलिस ऑफिसर बन सकता है?
4: जरूर बन सकता है, मगर रवि मुझसे सिफारिश की उम्मीद मत रखना.
6: तो आप सिफारिश नहीं करेंगे? वेरी गुड, फिर तो मैं कल ही एप्लीकेशन भेज दूंगा.
0: 07925-700-272, would you like to hear it again?
4: नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा. पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे एजुकेटेड यंग मैन की जरूरत है. एड नहीं देखा तुमने?
5: ओह कम ऑन डैडी, आप क्या समझते हैं रवि पुलिस ऑफिसर बन सकता है?
4: जरूर बन सकता है, मगर रवि मुझसे सिफारिश की उम्मीद मत रखना.
6: तो आप सिफारिश नहीं करेंगे? वेरी गुड, फिर तो मैं कल ही एप्लीकेशन भेज दूंगा.
0: व्हाट इज दैट?
7: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk.

0: Breakfast with Paul Shah and Vitabiotics.
1: Semi Robin Hood, who steals from the rich but does not give it to the poor. My God.
0: Drive with Sonia Dutta and Pepe's Piri Piri.
2: Oh, hang on a minute. Oh, yeah. Okay, cool. No, that's fine.
0: This is Sunrise Radio.
3: दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा